ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरे उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

खुशी का दिन है आया निकला मुहूर्त चंगा भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा और सूट पहन के बन गया दूल्हा कल तक था जो नंगा भाई घर

सदारलोचस लाइफी मंगल गायक सिद्धि विनायक गणपति बाबा मोरिया यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू द डिवोटी ऑफ योर्स यू ब्रिंग सक्सेस टू द इंडिविजुअल हु विल मेक दिस ऑफरिंग टू यू प्रभु दिस इवनिंग एज वी डेडिकेट दिस ऑफरिंग

नारियल फल। एवरीबॉडी टेक द कोकोनट बोल्ड बाय भगवान गणेश। भगवान, दिस इवनिंग एज वी मेक दिस स्पेशल ऑफरिंग ऑन टू यू, वी सरेंडर आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू योर लोटस लाइफ प्रभु। एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति.
1: रिकी रामलगन विथ यू एंड इट्स योर सुंदर सपना 102.7 FM.

0: ईश्वराय वरदाय सुरपयाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नाताननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते।
1: सबको एक आवाज़ बोलो, बस्ते जाता है।